काम साथी धुमधाम राइट सपन नया इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइफ छ सुपर फन एल्डर्स लव इट सो डू द यंग इट्स सेफ इट्स प्लेफुल

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।